सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू की अपनी अपनी विचार है। धर्म की दुनिया विच कर्म दी बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इसनूं ही गुरबाणी की रोशनी विच पढ़न की समझण की सोचण की विचारण की कोशिश करते हैं। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती। कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नूं उसके इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहने ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है, वो आप सच है, उसका न्याय सच है। एक गल वखरी है कि दुनिया विच जिथे इंसाफ मिले सारे अरब विच ईरान अफगानिस्तान ते भारत विच उसनू अदालत कहिंदे ने। अदालत अदल कहिंदे ने इंसाफ नू, अदालत इंसाफ दा घर अखरी अर्थ ये बनते ने। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे, अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे तो शायद मेरी इतनी जानकारी ना हो, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं तो इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है तो इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी, ते जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे च उत्थे किसे नूं नहीं मिलदा। है तो बहुत सारे देशों भी इस तरह नाम ही आता है अदालत। अदल कितने मिलता है, इंसाफ कितने मिलता है? पर सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आता है? करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार विच कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख की शकल सूरत दी नहीं, मनुख दे कर्मां दी। इस नूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करां, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असीं रहिंदे आं, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि कर्म भूमि। एक ओ जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन बतीत करने लिए आए ने, भोग भोगन लिए आए ने, खा लेना पी लेना सो लेना ते शरीर दी जरूरतां दी पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत भोग भूमि। मनुख नूं आख्या गया ए भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है, ए कुछ भोगन दे नाल नाल करन लिए आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है, भूमि कहने धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते साहिब कहने कर्म भूम में भोवो नाम, ये तो कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि ने। पशु अपने कर्मानुसार विकास नहीं कर सकता, इस तरह दे ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। वो
ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਪਵੇਗਾ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਤੇਰੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਫਲ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਖੁੱਲ ਇਤਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਖੁੱਲ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਘਟਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,

कारण ऐसा क्यों होया है, तालमेल नहीं बैठे है। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ए आख्या जांदा है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन, तू गिला क्यों करदा है। शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी चोली भर ले, जो कुछ तू जगत दे प्राप्त करना है कर ले, तेनू खुल ले, तेनू धरती दिती है ते बीज बोण दी तेनू खुल दे दिती है। तू केसर बीजना है कि निम बीजनी है, तू जौ बीजने ने कि चने बीजने ने, तू अंगूरां दियां बेलां लानियां ने कि किकर दे बीज बोने ने, ये तेरी मर्जी है, खुल ले। तेनू धरती भी दे दिती, तेनू बीज बोण दी खुल भी दे दिती, पर एक दफा बीज तू बो दिता ते बोण तो बाद तेनू ख्याल आवे मैं ते अंबां दे बूटे लाने सन, ला बैठा किकरां दे, अच्छा हुण परमात्मा मैथों भुल होई है, इन्हां किकरां नू ही अंब ला दे, नहीं लगणगे। ऐसा नहीं होवेगा, ये उसका नियम नहीं है, ये उसकी मर्यादा नहीं है। बाबा फरीद कहिंदे ने, लोड़े दाख बिजोरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट, लांदा है बूटे किकरां दे मंगदा है अम, चरखे दिच कतदा है उन मंगदा है रेशम, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। कतदा ते उन पे है, बुणदा ते उन पे है, ते मंगदा है रेशमी कपड़ा खड्डी तो, बोंदा ते किकर पे है, मंगदा अंब है। ऐसा हो है, बीज मनुख दुखा दे बोंदा है, मंगदा सुख है, इस तरह ही रहा है। और जद इस नु सुख मिलदा नहीं तो गिलिया नाल भर जांदा, और गिला इतना वध जांदा है कह दिंदा कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। लेकिन दूजे तबके दा मनुख ऐसा कह देंदा है, करन करावन सर्व को नाथ, उते आप ही नाथ है, मालक है, सब कुछ उसके हाथ च है, इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। फिर वो इंज ले लेंदा है, मनुख दे हाथ च की है, कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं है। तुसी आखोगे हुणे ते मैं कह रहा कि तू किकर भी बीज सकदा है, अंब भी बीज सकदा है, पर मैं अर्ज करा फिर भी कुछ नहीं है मनुख दे हाथ च। क्यों? किकर बीजण दी खुल भी परमात्मा ने दिती है, अंबां दे बूटे लाण दी खुल भी उसे ने दिती है, खुल उसदी दिती हुई है, ये साडी मर्जी असी की बीजना है। पर साड़ी मर्जी की यह जी खुल है, यह भी उस अकाल पुरख की दिती हुई है। तो इस बारीकी ते पहुंच के भगता ने कह दिता साढ़े को कुछ भी नहीं, जे खुल भी है ते तेरी दिती हुई, साढ़े को अपना की होया, कुछ भी नहीं। इस रूप में आख्या, जिस रूप में असी ले लेने, एक शराब पी रहा कहें जदों गुरु छड़ावेगा उदों छड़ लेंगे, इहदा मतलब गुरु अजे तेनों यही आखदा पी, सवेरे भी पी ते शामी भी पी। लोकी कह दें जब परमात्मा जगाएगा उदो अमृत वेले जाग के जप करांगे, इहदा मतलब अजे परमात्मा नहीं चाहता। जब गुरु चाहेगा उदो नेक कर्म करांगे, इहदा मतलब अजे गुरु यही चाहता है तू बुरे कर, तू माड़े कर। ये जिहड़े अर्थ लोगों ने किए ने ते समझे ने, ये उन्हां दा भुलेखा है। ते इस वक्त दी विचार दा आधार जिहड़ी पंक्ति मैं चुनी है धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे च सच कर्मा अनुसार फैसले करदा है, बाकी कुछ भी नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, महात्मा बुद्ध ने इत्थे तक ऐलानिया कह दिता
भगवान दी फिक्र

और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदे हां जो एक स्वप्न उजागर आउंदा है और नाम दे मिलदे हां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा होंदी है। उसे दिन ही पता चलदा है धन किसनू कहंदे ने, जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिक्की पै जांदी है जिस दिन ए असली धन मनुख नू जो है प्राप्त हुंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे सियाणे मनुख, ओ पैनना जो खुआरिया नू जन्म देवे, मन विच विकारा नू जन्म देवे, ऐसे पैनने नू एक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए मूल संदेश उपदेश खान पीन पहनन दे बारे जिस दिच बहुत वड्डी सच्चाई है, जो इस तल ते संजमी नहीं, वो परमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं।

0: रस बड़ा लेकिन शरीर नू कंबड़ी दंदियां वजन हिटकी जो ऐन मौत दे समय आंदा बिल्कुल ओही हालत। उस हालत विच लड़खण आंदे हुए घर पहुंचे आप दी पत्नी खदीजा जो कहिंदे ने स्वयं इबादत गुजार सी खुदा दे विच विश्वास करन वाली सी उन्हें देखिया ए हालत। उन्होंने भी अनेकां कंबल पाए भजी होई गई हकीम नू बुला लिया देखो तो सही हजरत नू की हो गया है। और हकीम उसे तरीके नाल जांच पड़ताल करता है जिमें वैद ने गुरु नानक देव जी महाराज दी कीती सी। पल्ले हकीम ने कुछ नहीं कहा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें भी कह दिता कि मेरी पकड़ तो परे है अगर कुछ है तो मेरी पहुंच तो परे है मेरी जानकारी तो परे है।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरखे निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणा विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वो जीवन दी है सदीवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ा सारियां मंगा लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने दी संभावना। भय उसे दई है चाहत लालसा जीवन दी और परबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नु वेखिए उपनिषदां दे ऋषियां नु वेखिए पुराणिक प्रसंगां नु देखिए तो जीवन दा दाता पदार्थां दा दाता विष्णु मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया उदा कोई मंदिर नहीं बन गया संसार सो बन गया जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा शिवजी दी पूजा हिंदू जगत विच। विष्णु नाल लक्ष्मी है जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिवजी दे गले विच ते फनियर नाग ने मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिवजी दा वसेवा है मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है। जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्थां नाल संबंधित है एक प्रतीक है। लालसा परबल जीवन दी है भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बने आ रहे बने आ रहे बने आ रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दें, क्योंकि तेरे गले विच सप्प ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है, और तेरा वसेबा शमशान दा है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुने है, मनुख दी कमजोरियां नू खूब समझे है, ते नापिया गया है। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है। मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जे जुग चारे आर जा होर बसोनी हो रहे, जे किधरे उम्र चार जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, ते फिर होर दस गुणा वध हो जाए, होर दसोनी होए, सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, नौ खंड पृथ्वी विच पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जानिया जाए, समझिया जाए, पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चलन ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नो बड़े सोहने ढंग नाल समझे ते बयान कीता है। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस की रथ जगले। प्राणा दे होर भी प्यास है, सारे मैनू चंगा चंगा करके आखन, महान आखन, पूजन। पर जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के, जे नौ खंड पृथ्वी दे मनुखा दी निगाह दे थले भी कोई आ जाए, लखां साल दी उसकी आयु हो जाए, जे परमात्मा दी निगाह दे थले नहीं आया ता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्हां ही दोहां उलझना विच मनुख दा जीवन बतीत होंदा है, और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है। जीवन दी लालसा ते मरण दे भय विच एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जांदा है। आद काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत मृत्यु तो रहत जिस विच मौत नहीं। कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त होवे जिस नाल मौत ना आवे, अमृत जीवन मृत्यु तो रहित हो जाए, जीवन अमृत हो जाए। हर मनुख जीवन नु अमृत बनाना चाहता है, और हर मनुख ही क्यों, मौत ते पशु पक्षियां नु भी नहीं चाहिए, उन्हें दे अंदर भी भय ते सिर्फ इसे दा ही है। जीवन दी लालसा जीवां दे च बड़ी प्रबल दिखाई देंदी है, बड़ी प्रबल दिखाई देंदी है। अमृत दी चाहत, अमृत दी मंग प्रथम मंग है, सिरमौर मंग है, प्रबल मंग है। सतगुरु दी बाणी दा फरमान, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। वो अमृत दा कुंठ इसे जीवन सागर दे अंदर है, और इसे जीवन दा रेड़का पाना पेगा। जप तप द्वारा इसे अमृत दे कुंभ नो बाहर प्रगट करना पेगा। इस अमृत दे कुंभ नो कोई प्रगट कर सके, इहदे लई एक प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इस दे लई एक तड़प चाहिए, इस दे लई साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंड पंप नो ਜਦ ਗੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਜਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਅੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਧਰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਨਦ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। 22 ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, 19 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਪ ਤਪ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ कि जितनी पूजा प्रतिष्ठा वधे धन संपदा वधे उतना ही उसके हिरदे विच धर्म वधे जप तप वधे बंदगी वधे ताकि संतुलन कायम रहे। ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधदा है धर्म घटता है, जैसे बाहर दे सुख वधदे ने अंदरूनी सुखा नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़दा है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर विच अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा चार कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ये लालसा जागी, अपने सिख बनाई है, अपने सिख बनाई है, अपनी सिखी दा वादा करिए। लिहाजा कार भेट जो मिलती सी गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेट नूं भी ये पूरे दा पूरा खुद अपने कोल रखण लग पए, गुरु तक नहीं पहुंचांदे सन। इन्हां विच कुछ कने थे गुरु होण दे दावे भी कर दिते, सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे हुए वासना विच ग्रसे गए, और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ए मसन जुलम ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नू धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका हाजमा कमजोर होवे और वो पूजा प्रतिष्ठा नू हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नू हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा के लैंदा है, लेकिन धन दी सही वरतों, धन दी हिफाजत और धन दा विस्तार, धन दी वरतों किसी किसी नू जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जब मसन चोटी दे धनाड हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नू ये प्रथा खत्म करनी पई। चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ए प्रचलित आपने कीता, और ए अधिकार एक नो नहीं पंजां नू दित्ता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। केड़े पंज? जो गुरु नू प्यारे ने ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम विच गुरु दा प्यार है। ऐसे पंज जो गुरु नू प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे अंदर है, ओ वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवई है, चौपई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नू बाटे वे दे जो पानी है उस दे च रखन, ताकि हिरदे नू जोड़ के पड़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी विच प्रवेश करन, ताकि वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे विच लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच वासना है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच प्रबल हंकार है, अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है, और उस सख नूं अगर एक टिक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जांदा है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करदे ने। ये प्रथा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विचे खंडा नाल फेरी जाना, खंडा शक्ति दा प्रतीक है, जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया। खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पति द खेल द चाय बनाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया शक्ति तो होया। खंडा शक्ति दा प्रतीक उसे तो बाणी आई है उसे तो संसार आया है उसे तो अमृत आया है। इस तरह बाणी दे राही पाणी विच शक्ति दा प्रवेश परमात्मा दा प्रवेश उस दे रस दा प्रवेश पंज प्यारे फिर अगां चल के इसनू छकांदे ने जो अबलाशी ने जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनू स्कूल दी यूनिफॉर्म पहननी पैंदी है दाखला लेना पैंदा है एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी सिर दे विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन नू। ये सीस हे गुरुदेव जिस दिन थोड़े चरणा ते रखिया सी असी उस दिन दा ही समझ लिया सी थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है। इस तों बाद जद पंज प्यारियां ने ये प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हुक्म दे मुताबक तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है। इस वास्ते जद सीस गुरु दा है तो सीस गुरु वर्गा होवे इस दे सोचनी परमात्मा दी इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर दे चरणामृत दी थां ते खंडे बाठे दी अमृत दी जो है प्रथा चली और ये धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाहिया कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकनगे अमृत छका सकनगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है पहले खुद पहाड़े पढ़दा है नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है फिर ऐसा है बच्चियां नूं कहिंदा है हुण तुसीं सुणाओ मैं सुनना है। पहले आप वक्ता हुंदा है बच्चे श्रोता हुंदे ने फिर बच्चे वक्ता बणदे ने उस्ताद श्रोता बणदा है ये देखण लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया छकाया पहले अमृतमई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत और इस तरह पंज प्यारे तैयार की थे फिर देखना चाहिया वाकई ये प्यार नाल भर गए ने ये महान हो गए ने और जो कार्य मैं चाहना इसनु ये कर सकनगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ तुसी मैनू सीस भेट कीता सी मैं सरबंस भेट करांगा मैं सब कुछ भेट करांगा मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है सब ही इन ही को मेरे घर विच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा सब कुछ थोड़ा। और जद पंजा ने अमृत छकाया है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोलने सर्वलोक ग्रंथ दे सतगुर इना पंजा कोल अमृत दी दात मंगदे ने पंजा नू साफ कहंदे ने सिख सो रहत पंच जो मिले मम स्वरूप सो जानो भले सिख पंचो में मेरो वासा पूरन करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है ये पंजां दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है इना विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इना पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने अब अमृत छकाओ जैसे तुम लेने हो। जिस तरह ये अमृत लैणे ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया से, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पंजा ने छकाया, सतगुर प्रसन्न होए, हां तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नू प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे चै, ओही अमृत छका सकदे ने और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते हैं, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकदे हां उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, रहणी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा।

다른 걸 원칭지 말아이다. 혹은 렛 베아리 모지코 식 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, होर जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लैके गुरु प्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र का जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उस को समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार, ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे दिख। रहत नाम इस तरह के बोल ने, ज्यों काहू पे गधा नवायो, होल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दे चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नू बाजार विच ले आवे, लोकी उसनू वड्याण नहीं लगे, बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नू इशनान करा के चंदन ला के गले विच फूलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने। तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रख होता है। सिर्फ सिर्फ केस ने, ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इना पंज ककारा नाल, कक्का के

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निरवैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देंदा है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां शाखां अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखां दरख्तां दियां। हूबहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार किया है। किधरे पीले रंग का किधरे गुलाबी रंग का किधरे चिट्टे रंग का इतने सुंदर शिंगारमई वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। यह मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है। मन की हालत कुछ होर हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ

0: ती अस कही, इस तरह आखे, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि दे जगत दे उसके पति तो बिना और कोई भी पुरुष नहीं है, वही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसनु अध्यात्मक रंगन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दिती है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने हा, धन सती दरगे परवाने हा। जिसने परमात्मा दी झलक अपने पति दिच देखी, महाराज कहने धन है वो सतवंती, धन है वो स्त्री। कोशिश ते होई सी साडे देश दे कि स्त्री पुरुष नु परमेश्वर आखे, परमेश्वर दी झलक वो पुरुष दे चों देखे, और पुरुष स्त्री नु देवी आखे, वो प्रभु दी शक्ति दी झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इक नु देवी दिखाई देवे और इक नु परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जांदा है, घर हरि मंदिर बन जांदा है। पर इक नु भूत दिखाई देवे, इक नु डायन दिखाई देवे, घर ही नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी ते कितने घर नरक बने हुए ने, क्योंकि घर च कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नो डायन दिखाई दे रही है और एक नो भूत दिखाई दे रहे। जीवन दा ढंग ना आया, एक दूजे नु समझण दा ढंग ना आया। कवि तुलसी कहंदे ने जिथे चंगे माड़े पुरुषां दे चौंदे ने, उथे चंगे माड़े इस्त्रियां दे च भी होंदे ने। जैसे पृथ्वी ते सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं औगुण भी ने। ओ औगुण पुरुष दे अंदर भी ने, ओ औगुण इस्त्री दे अंदर भी ने। उत्तम इस्त्री दी तस्वीर कशी करदे हां, तुलसी कहंदे ने उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। मद्धन पत प्रत पर प्रत देखियत ऐसे, भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उस तो थले दी है उते इस तरह समझ दिए पर पुरुष नो ये पिता है, भरा है, पुत्र है। उदी दृष्टि इस तरह दी होंदी है। अगां चल के कवि तुलसम कहंदे ने कि बिन अवसर भय तह रह जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया, उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नीवी है, ये सब तो निखिद है। अगर ऐसा निखिदपना स्त्री ते लागू होंदा है तो फिर पुरुषां ते भी लागू होंदा है। पर गुणा दे तल ते अगर देखी है तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकता है, स्त्री प्राप्त कर सकती है। घर विच धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष दा है, अद्धा अधिकार स्त्री दा है। आज ते कानून भी ऐसा मनन लग पे है। एक गल वखरी है कि पुरुष दा अहंकार बराबरी देन नु अजे भी तैयार नहीं, लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री दी नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे, मुश्किल। और अगर स्त्री पुरुष दी बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे, ये उसकी सब तो वड्डी भूल होवेगी। क्योंकि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं, पुरुष जैसे कपड़े पाके, पुरुष जैसियां जुतियां पाके, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के, और पुरुष दी तरह ही गंदे नशे जो है करके स्त्री पुरुष जैसी तो नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हां, इन्हों बारों भी समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चमेली चमेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरोनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाने ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके, ते जद घर हो स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह, तो घर घर ना रहा, वो ते सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है, असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टूट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां दा प्यार नहीं मिलिया, मां दी गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उना दे प्रवेश नहीं कीती, तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उथे औलाद भी सखणी होई, धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथे सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने, अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया दे इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष दा इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी, और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे तो घर मंदिर बन सकता है, घर हरी मंदिर बन सकता है, नहीं ते उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होवेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री दा पक्ष पूरदे होया के है, जे कुछ महान मनुखां करके संसार दा इतिहास रौनकीला बनया होया है, वाकई इन्हां कुछ महान हस्तियां नूं इतिहास दिचों कढ दईए, सारा संसार बेरौनक हो जांदा है, पर इन्हां हस्तियां नूं जन्म देने वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, तो ये फुल किथे खिड़ने सन, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नूं बराबरी दित्ती। दैवी गुणा विच भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरवीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिनते जाइए, शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मान लीजिए, पर क्रांति शांति से आधारित होवे, सूरवीरता सहनशीलता से आधारित होवे, और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे, ताई खूबी है और मानसिक तल ते आनंद है। जे मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इना दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते, सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने, अमृत दोवें पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी और पदार्थ दे तल ते दोहां दी बराबरी, किसे भी तल ते इस नू पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया, और हर तल ते इस दे गुणा नू सलाहा गया, सन्मानिया गया। कहिंदे ने जद कोई पुरुष बंदगी करदिया करदिया पूर्ण पुरख बनता है, तो उस दे अंदर इस्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जांदी है, उस दे बोलां दे च भी इस्त्री भाव आ जांदा है। जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल इस्त्री भाव दे ने, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ए बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे ने कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है, इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखण वाले ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन देच वंडी हुई है। पशुआं नू लईए, पक्षियां नू लईए, बनस्पति तक नर और मदीन देच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नू देखिए, अस्तूल जगत नू देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम ईसाईयत यहूदी पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नू तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे च कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे च ए दो ने, और दोहां दे च ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नो बहुत सोने ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियों, एक गल नो समझो, जानो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष है। दोहां दा वजूद दोहां करके है, इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है, इस 60% पुरुष है, 40% इस देश मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, इस 60% स्त्री है, पर 40% इस देश पुरुष है। साढ़े देश ने नारी नो अर्ध अंग आख्या है। एक गल वखरी है कि कहन दा लब्बो ले जा अर्थ समय दे नाल बदले, नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इसके अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इसके अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना ट्रेंड देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे चै, और पूर्ण होना चाहता है, जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है, पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उसका नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली, इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है, ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन दा टिकाओ भाव नाल होंदा है, मन नू सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलती है, तर्क नाल मिलती है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है, तो अधूरी। स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है, तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म होया। तो जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्ति खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नु चलायमान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने, ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सहुरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञान हीणी है, तर्क हीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है, ਕਿ ਇਸ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕਸਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਧਾ ਟੰਟੋਲ ਟਟੋਲ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅੰਧੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੰਧਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਅੰਧੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ, ਤਰਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦਾ। ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸੁਭਾਵਕ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਜੋ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਮਰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਨਿਨਾਹਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ, برداشت کرن یورپ دی دنیا تے سارے پروار ٹوٹ گئے نے اور ایشیا دے بہتے پروار کل کلیش دے دل دل دے پھسے ہوئے نے استری دی ایرشا کر کے پر پرش دا ترک پھیلاؤ اس دے اندر بڑے پربل ہنکار نو جنم دیندا ہے تو پرش دا جو بنیادی اوگن ہے اہنکاری ہے بہت اہنکاری ہے پربل اہنکار کر کے اس دا بھی گھر وچ کلیش مچانا سبھاوک ہو جاندا ہے ہنکار جیلسی اس دا ٹکراؤ کسے وقت استری تے پرش دا ٹکراؤ ہو جاندا ہے اور دوریاں نو جو ہے جنم دیندا ہے لیکن پھر بھی اگر دوویں ستسنگی ہون ست پرشاں تو پریرنا لین والے ہون تو پھر دوہیں اپنے گناں دی صحیح ورتوں کر کے پروار نو سورگ بنا سکدے نے سنسار نو سورگ بنا سکدے نے پراچین زمانے تو لے کے ہن تک دھارمک جگت دیچ شاید کچھ انہی کمزوریاں کر کے استری نندنی رہی ہے اور نرک دی دواری کہندے رہے نے ساڈے دیش تے آدرش ایتے نرک دواری ہے اس واسطے سناتن مت دیش تے کسے حد تک اس نو شودر منیا گیا ہے کہ جنیو پہنن دا ادھکار نہیں رکھتی ਇਹਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਹੀਨ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਂਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਂਚੋਂ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ जैसे शूदर नू पशु नू ताड़दे रहिए तां ठीक रहिंदे ने इस तरह शूदर नू ते पशु नू जिवें ताड़दे आ उसे तरह इस्त्री नू ताड़दे रहिए तां ओह ठीक रहिंदी है पशुआं दी दुनिया विच खड़ा कीता इस महान चिंतक ने इस महान कवि ने साडे देश दे प्राचीन ऋषियां ने मुनियां ने ए घोर नरक दी दुआरी है भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करदे ने लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी इते मोक्ष द्वारी है इस तो बिना मुक्ति किते हैरानगी मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी किधरे मोक्ष द्वारी जिन्हां ने नरक द्वारी आख्या ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਰਮੋਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े बड़े भक्त ने ऋषि ने मुनि ने पुरुष रूप देच ने स्त्रियां देच कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखण नूं नहीं मिली साहित तरह तरह दी कला दे जन्मदाते भी पुरुष संगतराश चित्रकार कवि दार्शनिक फिलोसफर चोटी दे साइंटिस्ट चोटी दे राजनेता हर दुनिया विच हर पासे असी पुरुष नूं अग्रसर देखदे आं अग्गे देखदे आं तो पुराने लोगां कोल इह तर्क सी कहण वास्ते कि पशु दा मतलब है पछड़िया होया ते चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है पशु दा मतलब है पछड़िया होया पुरुष तो पछड़ी हुई है पुरुष दे पिछे है ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਕਸ਼ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਵਲ ਧਨ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 400 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 600 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰ ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਨਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 400 ਰਾਣੀਆਂ ਔਰ 600 ਬੇਗਮਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਧਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੀ, ਆਪ ਫੂਕਿਆ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਧਨ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਵਿਤਰੀ। ਸੰਗਤਰਾਸ਼ੀ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਠਲਾਇਆ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵਾਕਈ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਐਸੀ ਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸੰਤ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ, ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਨੇਊ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਚੋਲੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ।
1: ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਤਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਂਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੁਆਨ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਔਤ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਈ ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਭਗਤ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਰਾਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ तीन शब्द ने, भावें विद्वाना ने गिनती चार की थी है, और राग आसा विच तीन शब्द मानते ने, ते एक राग तनासरी विच उन्हां दा शब्द मन्या जांदा है। पर जदों असी गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़दे हां ते राग आसा दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान, भगत धन्ना जी दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान एक शब्द है जिदा सरलेख है महला पंजवां। उहदे विच हैरानगी दी गल है कि धन गुरु अर्जुन देव जी ने नानक पद की वरतों नहीं की, पर उसका सरलेख महला पंजवां है। भगत धन्ना जी का वह पवित्र शब्द जिस विच आरंभता विच भगत जी का वचन है, भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन ही धीरे। मैं सिर्फ बाणी ते फोकस केंद्रित होके कुछ बेनतियां करनियां, क्योंकि भगत धन्ना जी का अंदर आपा वह गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गुरबाणी विच है। जेड़ा शब्द है यह गुरु का आपा है, यह निज स्वरूप है गुरु का। भगत धन्ना जी के तीन शब्दों विचों एक शब्द गुरु अर्जुन देव जी का, जिस शब्द विच गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने उन्हां भगतां महापुरखां दा जिक्र कीता है जिन्हां नूं उस वक्त दे स्वर्ण जाति वाले उच्ची जात वाले नीवा कहिंदे सन। केवल नीवा ही नहीं कि जे उह परमात्मा दी भगती समर्पितता दा जिक्र करदे सन ते उन्हां भगतां महापुरखां नूं उच्ची जात वाले जलील भी करदे सन। देखो थोड़ा जा बाणी दी रोशनी च ए दास ने पिछले सालां विच भी एक बार अर्ज कीती सी, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भगत धन्ना जी परमात्मा दी भगती किवें कर लगे, उन्हां दा पवित्र शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच कि भगत धन्ना जी नूं करनी कमाणी वाले महापुरखां दे जीवन बारे पता लगा। सब तो पहला भगत नामदेव जी, उन्हां दे पवित्र जीवन संबंधी यह समाचार मिलिया कि उच्ची जात वाले उन्हूं अद्धी कौडी दा छींबा कहिंदे ने। गल ध्यान नाल सुनियो, कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर निकल के नहीं। अद्धी कौडी दा छीपा कहिंदे ने, पर अज उस दा अंदर परमात्मा दे नाम च शब्द विच इन्ना कु लीन होया कि गुरु ने अद्धी कौडी दे छींबे नूं अज लखां दा बना दिता है। उहदी अरदास मालक दे दर ते सुनी गई। दूसरा बचन कि भगत कबीर साहब जी नूं बनारस दी धरती ते स्वर्ण जाति वाले जुलाह कह के पुकारदे ने। जदों उह सच दी गल वी करदे ने, अखौती उच्ची जात वाले उहदी सच दी आवाज नूं वी दबाण दा यतन करदे ने, पर उस महापुरख बारे दस्या गया कि उन्हां ने अपनी किरत जरूर कीती, पर तमे ते लालच दी बिरती नूं त्याग के केवल परमात्मा नूं गाया, जिस नूं लोक जुलाह कहिंदे सन। तन गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने धन्ना जी नूं दस्या गया कि उह गुणां दी खाण बन गए कबीर जी। तीसरा बचन कि भगत रविदास जी ने उन्हां दी बिरादरी दे लोक लोकां दे घरां विच्चों मरे हुए पशुआं नूं ढोंदे ने, पशुआं दा चमड़ा उतारिया जांदा है, पर सतगुरु दी बाणी विच गुरु अर्जुन देव ने कहा, भाई संसार दे लोगो कि देखो कि जिहड़ा घर घर दे विच जा के मरे हुए पशुआं दा चमड़ा उतारन दा काम करदा है, उहदे खिरदे विच परमात्मा दी भगती वस गई ते उहनां ने साध संगत विच्चों परमात्मा दे दीदार नूं पाया। चौथा वचन है कि वह भगत सहन जी जिन्हां नूं लोक नाई शब्द वरदे सन। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, मैं किसे जात बिरादरी नूं केंद्रित रख के नहीं, पर जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच है वह मैं जरूर सांझा करना चाहुंदा हां कि उहनां नूं लै लोक बुत्तियां करन वाला नाई कहिंदे ने, पर हजूर ने कहा देखो कि अज वह महापुरख परमात्मा की भगती करद्या करद्या श्रोमणी भगतों के शमूलीयत हो गई। इस वचन नूं ध्यान नाल पढ़ियो। नामदेव जी लई शब्द छीमा वरत्या गया, कबीर साहब लई जुलाहा वरत्या गया, भगत रविदास जी लई शब्द चमार वरत्या गया, सैन जी लई भगत शब्द नाई वरत्या गया। पर सच एवे कि एक हल वाण वाला जिमीदार जिदे लई शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने जाटरो वरत्या है, एक जाट उस दे मन विच इन्हां महापुरखां दे जीवन दीआं साखियां, इन्हां दी परमात्मा विच अभेदता, इन्हां दे अंदर परमात्मा दी बख्शिश नूं देख के एक हल वाण वाला जिमीदार परमात्मा दी भगती भी जुड़िया। उन्हें इन्नी भावना नाल परमात्मा दी भगती कीती, तन गुरु अर्जुन देव महाराज कहिंदे ने उन्हें परमात्मा दे प्रतख दर्शन किते, ते जो कुछ उन्हें अपनी जबान तो क्या परमात्मा ने उस भगत दे हर कार्ज नूं सिरे ला दिता। यह पवित्र शब्द है कि गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। एते शब्द छीपरो वरत्या है कि छिंबा, गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, ते महाराज कहने नीच कुला जोलारा पयो गुणी गखीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हो वा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर कर सुनिया, हिरदय वस्या पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। ए चार महापुरखां दा जीवन सुन के ते इत्थे एक दास अर्ज करनी चाहेगा। तुसी बाणी पढ़न वाले समझन वाले बैठे हो ते भाई साहब जी दी अंदर दी एक सिख है कि जिन्हां दी बाणी असी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ने हां उन्हां भगतां महापुरखां दा जीवन ते उन्हां दी रचना विचों कोई संगत नाल सांझ पाई जाए। मैं कई बारी सोचना क्योंकि सानू जो कुछ शुरू तो सुनाया गया असी उन्हूं अपने दिमाग विच फीड कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न दा यतन ना कीता। क्योंकि अज जो मैं बोलांगा आप सुनोगे जी सदके सुनो, पर एक बेनती है कोई भी बोले खुद गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल आप सांझ पाओ, ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द साडे जीवन दी अगवाई करे, सानू उस खजाने की जानकारी मिलेगी। हुण अज तक साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिन भी इत्थे समागम सी कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे। अज तक मैं बाबा कालू जी की याद विच कदी किसे प्रोग्राम नू अटेंड नहीं किया। हो सकता कीर्तनीय गुरसिख बैठे ने शायद इन्होंने भी ना किया होवे। बाबा कालू जी की यादगार किते ज्यादा नहीं मिलती, उन्हां दी याद विच किते गुरमत समागम नहीं देखे। कारण इको, क्योंकि साडे दिमाग विच इको गल पा दित्ती गई, वह झिड़कते रहे वह मारते रहे उन्हां नूं समझ ना पई। पर एक मैं बेनती करांगा, वह पिता ने पिता अपने पुत्र दे जीवन नूं चाहुंदा है अपनी बिरती नाल कि बहुत तरक्की करे, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी च देखियो जिथे धरती नूं धन किया गया, मां नूं धन किया गया, कुल नूं धन किया गया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु दे पिता नूं भी नमस्कार कीती गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इक वचन आउंदा है कि धन धन पिता। हुण की आपां बाबा कालू साहिब जी नूं धन धन नहीं कहांगे, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। ये चार शब्द ने कि पिता धन, कुल धन, मां धन, ते चौथा शब्द फिर क्या गया गुरु नूं धन। हुण यह जिहड़ा शब्द आपां पढ़ने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब विच तां बाणी परमानंद दी दर्ज है, पर धन्ना जी नूं इह परमानंद बारे क्यों ना गुरु अर्जुन देव ने विच अंकित कीता। बाणी भगत रामानंद जी की भी दर्ज है, पर चारा भगतां नूं विशेष करके हजूर ने अपने शब्द विच उदाहरण वजो लिया, परमानंद रामानंद भगत पीपा जी भगत बेणी जी

परमात्मा दे दीदार पा ले। रामानंद परमानंद एदा मतलब यह नहीं कि उन्हों का जीवन जा उन्हों की रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हों संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने, पर इन्हों भगतां ने एक क्रांति लिया कि जिन्हों लोग कहिंदे सन नीवी जात दे, उन्होंने सच एवे कि समाज दियां नफरत दियां ठोकरां खांदिया होया भी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहब का एक सलोक है, वह कहिंदे सच एवे कि लोग मेरी जात दा नाम लैके मजाक उड़ांदे, मैं शहर विच लंघना पिंड विच लंघना ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लैके पुकार देने, ते देखो महापुरखां ने बचन दर्ज किते, पर कहिंदे परमात्मा मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ए ठोकरा ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती दा एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोल ने कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, हर कोई मेरी जात हसदा है मजाक करदा है। कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, बलखारी इस जात को जे जपियो सिर जिंगार। कहिंदे मैं कुर्बान का ए दे तो कि जिस जात विच रह के मैनू परमात्मा की भगती मिल गई। सिर्फ मेरी बेनती सी कि चार भगतां दा जीवन सुन के वह महापुरुख भगती कर लगा। असी शब्द पढ़ लैने आ क्योंकि मैं लड़ी जोड़ना चाहना। पहला शब्द कह के भरमत फिरत बो जन्म बिलाने तन मन धानी धीरे। ये सारे शब्द विच भगत जी ने किते ठाकुर पूजा का जिक्र नहीं किया। इस शब्द दियां अखीरलियां तुकां ने कि धन धन पाया धरनी तर मिल जन संत समाने, कि धन्ने ने धरती दे सहारे परमात्मा नूं पाया। ते देखो ना शब्द यह नहीं लिखिया कि किसे पत्थर नूं पूज के, उन्हां शब्द वरत्या कि मिल जन संत समाने, परमात्मा की भगती करने वाले महापुरखां की संगत करके। हुण उस तो बाद जिहड़ी अगला शब्द कह महला पंजवां, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोलारा पयो गुनी गुहीरा, रविदास तवंता ढोर नी तिन त्यागी माया, प्रगट हो वा साध संघार दर्शन पाया। ए बिद सुन कै बिद दा अर्थ सानू रुकना पेगा कि उन्हें आ बिद आ सारे तरीके सुने, इस घटनाक्रम नू सुनिया, उन्होंने तवारीख नू सुनिया, उन्होंने भगतां दे जीवन नू पढ़िया सुनिया। ए बिद सुन कै जाट रो उठ भगती लागा, ते महाराज कहिंदे मिले परताक गुसाइयां धन्ना, वडभागा ए संत जन जिन्हां दी सोबत करके उन्होंने पाया। मैं सिर्फ उन्हां दे शब्दां नू अपने निर्धारित समय विच सिद्धांतक जो पक्ष है वह अर्ज करनी चाहांगा। पहली तुक है गुरु ग्रंथ साहिब दे राग आसा विच भगत जी दी कि हे प्रभु ऐस जीव आत्मा नू भरम दिया भटक दिया पता नहीं किन्ने कु जन्म हो गए, भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, एक दो नहीं बहुत जन्म हो गए ने, पर अज भी इस अंदर नू समझ नहीं पई, तन मन धन नहीं धीरे। तीन शब्द ध्यान दिया, जे मैं पहली तुक सिर्फ लैनी ते दूसरे दो शब्दां दी व्याख्या करा। तन मन तन नहीं धीरे, ना तो तन ने सदीव काल धीरे का अर्थ धीरज, धीरज का भाव अर्थ टिकना। कहने ना तो तन ने टिकना, ना बंदे का मन टिकदा, ना जड़ा ये तन दे अमार लाई बैठा। सच एवे ना तिना चीजा विचों कोई चीज भी बंदे दे नाल निभण वाली नहीं। बस इन्हों असी थोड़ा जा विचार लीए, तन मन तन नहीं धीरे। मैं दो दो चार चार प्रमाण सिर्फ अर्ज करांगा बाणी विचों। देखो पहली गल, भगत जी कहिंदे आ तन केड़ा धीरे, यह केड़ा टिका विच है। आम तौर ते सी शब्द वरतने आ कि मौत वेले तन बिनसदा है, नहीं बेनती है, जन्म तो शुरू हुंदा है, मरण तक एदी प्रक्रिया मुकम्मल हुंदी है। यह तो साडे जिउंदे जी अपना रूप बदली जांदा है। जो अज मेरे तन कोल है, अज तो 10 साल पहला स्वरूप नहीं सी, जे रब जिंदगी देगा ते अज तो 10 साल बाद ए चेहरा इस तरह का नजर नहीं आएगा, क्योंकि तब्दीली है, ये टिकन वाला नहीं। इन्हें ऐसा

आवाज आई, कहन लगे ओ मिस्टर किंग चेते रख, जे तेरे पुत्र दी लाश दे टुकड़े होन ते तेनू रोक के कही एक रात रुक जा, रुक जाएगा? अंग्रेज दी अखां भर रही कहने उस वेले कहना चाहते की हो, कह लगे सी चाबी चाहते हैं। ननकाणा साहब दी चाबी दिती, जदो दरवाजा अंदर जाके खोलिया वड्डे वड्डे रास जिहड़े सन उन्हां दीआं भुब्बां निकल गईआं, अंदर थां थां ते टुकड़े मास दे कड़े कंघे केस खिलरे पए। दरवाजा बंद कर दिता ते जिहड़े जिहड़े परिवार विचों जथे दे सिख आए सन उन्हां नूं समय भेजे, आ जाओ खोपड़ियां ने लत्तां ने बाहां ने अपने अपने दे अंग ही पहचान लवो। गुरमुखो दूजे दिन फिर पंथ लई दरवाजा खोलिया, ये 23 फरवरी की घटना है। जदो दरवाजा खोलिया अज सारा सिख जगत आया, जदो दरवाजा खुलिया अंदर प्रवेश किया, जड़ी अर्ज करनी थोड़ी जी कागरता दे आजे, अंदर प्रवेश किया थां थां ते देखिया भी खून दे धब्बे ने, ते भाई साहब का शरीर कुछ कहने जंड नाल अध सड़िया पिया सी, पहचानिया नहीं गया वो लाश केड़ी। अंदर लंघे ते वो माई भी आई जिहदा पुत्र ते पोतरा सी। भाई नारायण सिंह कहिंदे ने मैं अखां नाल उस माई नूं तकिया है कि वह टुकड़े लभे पई, मास दे टुकड़े पोले ते उहदे विच्चों एक लत लभी जिहदी सज्जी लत ते फुलवैरी सी। ते भाई साहिब भाई केर सिंह जदों फौज विच भर्ती सन ना, ते एक रात लत स्नो विच रहण करके फुलैरी हो गई सी। कहिंदे ने उसे वक्त पिन्नी तो थल्लिओ लाश वह लत चुकी ते बुढ़ी सीने नाल ला के कहिंदी लोको आ वेखो शेरां दे शिकार करन वाले मेरे पुत्तर दी लत। सारा दिन उस लत नूं छाती नाल ला के रखिया, पोते नूं लभदी रही पर पोता लभना कितों सी। प्यारिओ उस वेले फिर सिख पंथ इकट्ठे होए, वड्डे वड्डे रास उहनां दे अंदर वह तुरे, चार लाशां अध सड़ियां मिलियां जिहड़ियां पछाणियां नहीं गईयां, 119 खोपड़ियां सड़ियां हुईयां मिलियां मेरे गुरु नानक दे घर विचों, ते 7 खोपड़ियां बाहर मिलियां आवे विचों। 119 खोपड़ियां अंदरों, 7 खोपड़ियां बाहरों, 126 खोपड़ियां, 4 लाशां अध सड़ियां, ते जदों निक्के निक्के मास दे टुकड़े चुन लगे ते 3 वड्डे टोकरे निक्के निक्के मास दे होए सन, जिवें मास किसे ने बकरी भेड़ दा वड्डिया होवे, 3 टुकड़े मास दे ते जिहड़ियां छोटियां छोटियां हड्डियां सन 10 टोकरे छोटियां छोटियां हड्डियां दे होए सन। छोटे छोटे अस्त शाम दे वेले इको चिखा बनाई गई। भाई हीरा सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करन गए, कुछ निशान सन गोलियां दे, ते कहिंदे ने जदों हुक्मनामा लिया ना रुमाला चौके रुमाल ते सुही राग विच आ गया कि तप तप लोए लोए हाथ मरोरू, बावल होई सो शो लोरू, तैसे मन में किया रोस मुझ अवगण शय नाही दोष, शरीर भुज के काले हो चुके सन ते मेरा गुरु कह रहा सी ए कालख ओ नहीं काली कोयल तू कित गिन काली, अपने प्रीतम के को फिर है जल। भाई साहब ने हुक्मनामा लिया उत्ते रुमाल पा दिता। शाम दे वेले प्यारियो सूरज छिपण तो पहला लकड़ा कठियां करके चिखा चुनी, पहला प्यारियो 4 लाशां अग सड़ियां रखिया, फिर 126 खोपड़ियां टिकाईया, कियो जा खिरदा होवेगा किवें चुकदे होणगे। कहिंदे ने थां थां बैराग ते जपजी साहिब दे पाठ दी आवाज पई आई, 126 लाशां वाहिगुरू, 4 लाशां 126 खोपड़ियां उत्ते 3 टोकरे मास दे 10 टोकरे हड्डियां दे, ते प्रोफेसर भाई जोध सिंह ने अरदास कीती। अरदास तो पहला छोटी जी तकरीर कीती, उदो आरिया समाजियां बड़ी चुकी सी आत, सिख झूठ बोलदे ने जिहड़ी अरदास विच कहिंदे ने बंद बंद कटाए कट्टे जांदे ने बंद बंद, ते भाई साहिब प्रोफेसर जोध सिंह कहिंदे ने जिन्नू छक है इतिहास अपने आप नूं रिपीट करदा है, असी केवल बंद बंद कट्टन दी साखी सुनांदे नहीं असी कटाने भी हुंदे आ। जिन्हें तकने इस चिखा नूं देख सकदा है, शाम दे वेले लकड़ा रख, परिवार किसे दा बच्चा किसे दा भरा सी, इथों तक के कई अजे व्याहे होए सन कुछ दिनां दे, सारे जी इकट्ठे होए, जदों लांबू लाया उस वेले कुछ मते पास कीते, अज दा प्रबंधक नूं चेते रखे। उस वेले मता सी सब तो पहला कि बाबा करतार सिंह बेदी नाल पंथ विचों उहनूं छेकिया जाए, उहदे नाल सांझ ना पाई जाए, महंत दा साथ दिता सी, महंत विरुद्ध कारवाई कीती जाए। तीजा मता सी
ਕਿ

मैं उन्हां दी सेवा करनी चाहुंना और तेनू भी सेवा करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। जे सेवा कमाउनी चाहे कमा सकनी है। लक्ष्मी पुछदी एस वक्त की सेवा कर सकने आ। ये कहन लगा प्रशादा तैयार कर, उन्हां दा पेट भुखा है, जाके पहला सब तो प्रशादे दी सेवा करिए। लक्ष्मी गद गद होई। माता गुजरी जी दा नां सुन के ते छोटे साहिबजादियां दा नां सुन के इन्हें बड़े चाई चाई उठ के प्रशादा पानी तैयार किया है। घर दे अंदर बाजरा सी, बाजरे दा आटा तैयार किया, गुन्या ते बाजरे दियां रोटियां बनाईयां। इन्हें सरों दा साग जो रात दा पहला बनिया पिया सी, सरों दे साग दे अंदर मक्खन दा पेड़ा पा के मक्खन नूं गर्म किया है। सरों दा साग, बाजरे दे प्रशादे ते नाल दुध दा एक बर्तन इन्हें करमू चीवर नूं दे के माता गुजरी जी वल तोर दिता है। एक करमू चीवर लै के माता गुजरी जी दे कोल पहुंच जांदा है। प्रशादा पानी छकिया है। करतार दा कोट कोट वार धन्नवाद कीता है। मैं हैरान हुन्ना, असीं 36 तरह दे भोजन खांदे होए, सीस महलां दे अंदर रहिंदे होए, मखमली छेजां दे उत्ते सौं के देन वाले खुदा दा शुक्रिया अदा नहीं करदे। तन माता गुजरी जी, तुसी एस वक्त अपने घर विच नहीं हो। हे माता गुजरी जी, तुसी एस वक्त दुनियावी नजर दे नाल वेखिए मुसीबत दे घेरे विच घिरे हो, पर प्रशादा खान तो बाद देन वाले दा कोट कोट धन्नवाद कर रहे हो। निरंकार, दाना पानी तेरा, टहल पानी तेरे सिखे सिखा सेवकां दी लेखे विच लाउणी। माता गुजरी जी ने असीसां दित्तियां, अरदास कीती और पेट भर के भोजन छकिया है। और इस लक्ष्मी ने करमू चीवर दे हथ एक कपड़ा भी भेजिया सी उपर लैण वास्ते। ठंड दा समा है, इन्हें उपर लैण वाले कपड़े भेजे सन। उन्हां कपड़िया नूं विछा के उपर लै के माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे ओह रात करमू चीवर दी झुग्गी दे अंदर बतीत करदे ने। सवेर दी आमद होई, अगला दिन चढ़िया। ए लक्ष्मी बाई सवेर सार ही प्रशादा पानी तैयार करके फिर दोबारा करमू चीवर दी झुग्गी दे अंदर पहुंच जांदी है। और नाल ही ए लक्ष्मी बाई कुछ कपड़े गल पाउण वाले भी लियाई है। इस लक्ष्मी ने आण के माता गुजरी जी दे चरणा दे उत्ते नमस्कार कीती। माता गुजरी जी नूं दोबारा प्रशादा पानी छकाया। साहिबजादिया ने लंगर प्रशादा छकिया ते लक्ष्मी बाई वैराग दे अंदर आ गए। हथ जोड़ के कहन लगी, माता जी, आ जगत ते मेरा अधूरा जा रहा है। मेरे जीवन दा साथ निभाउण वाला मेरा गुरमुख पति एस वक्त मेरे जीवन दे विच नहीं है। वो शरीर करके चलाना कर गए ने। आ जीवन मेरा अधूरा है। माता जी, मेरी बेनती है, आप मेरी अरदास प्रवान करो ते मेरे जन्म ते मरण दा रोह कट दियो। माता जी, मेरी तुहाडे चरणा दे नाल बनावे। बस मैं गरीबनी निमाणी दी इको ही अरदास है। मैं गरीब हां, निमाणी हां, पर तुहाडे चरणा दी श्रद्धालु हां। माता जी, मेरे वल्लों ल्यांदी हुई तुच्छ भेटा लंगर दी प्रवान करो। माता जी ने प्रशादा पानी छकिया है। गल्लां बातें पै गए ने लक्ष्मी दे नाल, गंगू दे नाल ते करमू चीवर दे नाल। इतने समय नूं गंगू उठदा है। ओह कहन लगा, माता जी, मैं बाहर निकलदा ते हालात दा जायजा लै के आउना। हालात दा जायजा ए लिया कि नेड़े नेड़े ते कोई नहीं है, पर दूरों आवाजा आ रही ने जिवें मुगल फौजां दे टुकड़े ते पहाड़ी फौजां दियां टुकड़ियां चार चफेरे घुमदियां होन। ए लक्ष्मी कहन लगी, माता जी, क्यों ना होवे, मैं कपड़े लियाई हां, तुसी मेरे वाले कपड़े पाओ। इन्हां बच्चियां दा थोड़ा जिहा भेस आपां बदलीए, आपां सारे मेरे घर विच चलदे हां। ओह दिन माता गुजरी जी ने साहिबजादियां दे समेत, गंगू ब्राह्मण दे समेत लक्ष्मी दी घर दे अंदर जाके बतीत कीता है। लक्ष्मी दे घर दे अंदर मानो सारा दिन सतसंग जिहा माहौल बनिया रहा। बाहरों दरवाजे बंद ने, कोई आउंदा है ते लक्ष्मी अंदर नहीं आउण दिंदी। किसे नूं समझ ही नहीं पई कि अंदर कौन है। सारा दिन पारब्रह्म परमेश्वर दियां गल्लां हुंदियां रहियां। करमू ते लक्ष्मी ए माता गुजरी जी तो वार वार सदके हो रहे सन, दीदार कर रहे सन। इन्हां दो नैणां दे नाल मानो अपने

विशर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो गुण गावा दिन रात नानक चाहो एहो परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आज आप जी शहीदां दे सिरताज पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहादत वाला दिन मना रहे हो। आपने हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन नूं और हजूर दी इलाही बाणी दी विचार करिए। विचार आरंभन तो पहला आप कृपा करके समूह माई भाई एकाग्रता बख्शो, हजूर दे चरणा विच अपनी हाजरी लवाइए ते गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें पिछले दिने अर्ज कीती सी कि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दी शहादत दे कारण की सन, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं जहांगीर दी मतस्वी नीति जिहड़ा ये नहीं सी चाहुंदा कि गुरु नानक साहिब दे घर अंदर लोक इन्हां दा बादशाहां नालों वध अदब करन, नहीं सी चाहुंदा कि इन्हां कोल कोई केंद्री अस्थान होवे जिस दे अंदर दी ये बिरती सी मेरे प्रभाव अधीन आके जो इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी रचना कीती है, सिरजना कीती है, उस गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर मेरी मर्जी दे मुताबक शब्द पाए जाए। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने असूल नाल समझौता नहीं कीता, असूल तो गिरन दी बात नहीं कीती ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां नूं शहीद करन दा जहांगीर ने हुक्म दे दिता है ते लाहौर दी धरती ते मुर्तजा खाए जिस नूं ए फरमान जारी करके बादशाह ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी दे परिवार नूं उन्हां दा घर घाट जब्त कर लिया जाए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं कोशिश करो मनाण दी, जुर्माना भर दे जां ओ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच साडे मुताबक कुछ बचन दर्ज कर दे। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी उपर इस चीज दा कोई असर नहीं,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਦਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ

कि वह अंदरों जुड़िया हो सकता है। हां सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिते ते कबीर साहब ने दो शलोक अपने शलोकों विच अंकित किए ने। वह कहिंदे ने नामदेव ते तरलोचन की गल करदे आ। तरलोचन ने एक दिन पूछ ही लिया सी ना, कहिंदा नामदेव जिथे तू बहना है गल कई वारी तू नाम दी करना है, चार बंदे इकट्ठे होण तू गल गुरु दी कर जाना है, पर जदों तेरे बाहर दे मैं लिबास नू तकना वा जिओ जे कपड़े आए ओह जे पा के तुर पैना है। वेखा बनारस दी धरती ते कई ऐसे वैष्णव भगत ने, कई ऐसे साधु ने जिन्हां दे वस्त्र बड़े कीमती ने, उन्हां दे चेले बड़े पिछे ने, पर मैं तेनू पुछना चाहना ना तेरे पिछे कोई चेले तुरदे ने, कपड़े तेरे सीधे साधे ने, बोली जदों तू बोलना ओ भी सीधी बोलना है, ते सारा दिन कपड़े रंगण दा काम करना है, पर मैनू एक गल दस दे केवल लोकां नू तू नाम दी गल सुनाना है, सारा दिन तू माया विच खचते तेरा अंदर ता रब नाल आप नहीं जुड़िया। अगो नामदेव ने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कई वारी बाहर दे जीवन नू ताके भरमो न, जिन्हां ने अभ्यास कीता है ओह प्यारे दे चरणां विच अंदरों अंदर जुड़ चुके, पर अभ्यासी पुरुष हर कोई नहीं। हुण अपने सज्जन भी प्रमाण ए दे दिंदे ने, शब्द आरंभ हुंदा नामा माया मोहिया, कबीर साहब दे शलोक ने, नामदेव तैनू ता माया ने ठग लिया, कह तलोचन मीत काहे छीपो छैलै राम ना लावो चीत, तेरा चित राम विच नहीं जुड़िया, सारा दिन कपड़े रंगण ते रहिने। ते अगो उहने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कहन लगा नहीं ओए नामा कह तरलोचना मुख ते राम संभाल, ओ तरलोचन तू अपने मुख तो जी राम राम जपया कर, हाथ पाऊ कर काम सब मैं हथा पैरा नाल कम करना वा, पर कीत नवंजन नाल मेरा जिहड़ा चित है ना ओ कदी वाहिगुरु तो एक खिन भी दूर नहीं गया। उन्हें सवाल कर दिता यह किवें हो सकता है। अपने सज्जन भी यह कह देंदे ने ना कि हाथ पाऊ कर काम सब की तनरंजन नाल असी ता चलदिया फिरदिया नाम जप लैने आ, पर मैं अर्ज करा प्यारियो एक अवस्था है कदी तको खां अपने अंदर नू टिकाणा किन्ना कु मुश्किल है। आम तौर ते जदों नाम दी गल चले किन्नी एकाग्रता चाहीदी है। जिदन फौज विच कोई मनुख भर्ती हुंदा है ना ते उनू गोली चलाण दी जाय दसदे ने, ते जदों ओ गोली चलाण दी जाय सिखदा है ते उनू एक गल कहिंदे ने कि अपने एक नेत्र नू बंद कर ले, पर जदों तू गोली चलाण लगना उदों कोशिश करी कि अपने सां नू रोक ले, ते जो कह भी क्यों शरीर मेरा ता सारा पे है अपने सां नू क्यों रोका, ओ किन्ने हो सकदा है कि तेरे थोड़े जे सां लैण दे नाल ए बंदूक जेड़ी तेरी छाती नाल लगी है किते ए हवा दे एक इशारे नाल थोड़ी जी हिल गई ते निशाना टिकाने ते लगना नहीं। एक फौजी निशाना सिखन लग्या ओनू इनी एकाग्रता चाहीदी है। आ माइया सुई विच धागा पांदियां ने ते चेते रखो हर कोई पांदा जदों धागा धागा पाण लग्या अपने सां नू भी रोक लईदा है कि कई वारी सां दे नाल भी उंगल थोड़ी जी हिल जाए ते उस सुराख दे अंदर धागा पैंदा नहीं। इहदा मतलब इनी एकाग्रता इन्हां कम्मां लई चाहीदी है ते जिहदे बारे साहिब कहिंदे ने कि मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए ओहदे लई किन्नी कोई एकाग्रता चाहिए। पहला एकाग्रता नाल टिकना पएगा। एक दिन मैं अर्ज कीती सी पढ़ाई आरंभ विच करिए ते तरीके होर ने, ते जिदन बंदा पुग जांदा है ओदन ओहदे पढ़न दा ते कहण दा तरीका कुछ होर हो जांदा है। भगत साहिब नूं पुछिया इह किवें हो सकदा है कि बाहरों तू गल्लां भी करें हाथ पाओ कर काब सब कीत नरंजन नाल, जे बाहरों भुल चुक बोलदे पी खरे हर भाणे, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच रामकली राग है ते जोगियां दा बड़ा प्यारा राग है रामकली। यही कारण सिद्ध गोष्ठ भी रामकली राग विच है। साहिब ने भगत नामदेव ने एक शब्द विच पंज उदाहरणां दित्तियां, कहन लगे ए हो सकदा है संभव है, असंभव नहीं, ए हो सकदा है कि बंदा किरतकार करदे होया भी मालक नाल जुड़िया रहे, ते जिहड़ा बंदा जुड़िया नहीं ओ उदाहरण तो बिना समझदा नहीं, ओ कहिंदा कोई प्रमाण दे, ते भगत ने पंज प्रमाण दिते। कहन लगे सुन ओ तरलोचन छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ांदे ने, ते एक बच्चे

अकाल दे शुक्र भी जुड़ जांदा। सिखो घबराओ ना, बस बाणी दी टेक लैके रखियो। तीन नहीं भावे तीन करोड़ भी ये वार कर दे, पर जिस दा साहिब डाढ़ा होए तिस नू मार ना साका कोए। साहिब की सेवक रह शरणाई, आपे बख्शे देव डियाई। तिस ते ऊपर नाही कोए, जिस गुरु हरगोबिंद नू मेरे अकाल पुरख ने भेजिया, उस वाहगुरु तो वद ताकत कुल किसे कुल नहीं। तिस ते ऊपर नाही कोए, कौन डरे डर किस का होए। जे क्या महाराज दुख साहब किन्ने ताती वाव ना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। साहब बाणी विच कहिंदे ने कोई बात नहीं जे वार करदे, पर औखी घड़ी ना देखण देई। अपना बिरद संभाले, वाहगुरु अपने बिरद बाणी दी लाज रखदे। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब बचपन विच इन्हां उपर चेचक ने शीतला ने वार कीता, जिन्हों आम तौर ते शीतला माता कहिंदे ने उस बीमारी नूं। पर गुरु हरगोबिंद साहिब फिर नवां नरोए, उस अकाल पुरख की कृपा नाल चेचका चेचक की बीमारी भी खेड़ा छड़ गई है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब थोड़े जे होर वड्डे होए ते इन्हां दी पढ़ाई का प्रबंध किया गया। सिख विद्वान ये मानते ने कि पढ़ाई वास्ते गुरु अर्जन देव जी ने बाबा महादेव जी तो पुछया सी। मैं कोशिश करना संखेप विच गुरुदेव दे जीवन नू बयान कर जावा। वैसे ओदा जीवन बेअंत है। साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब की पढ़ाई का प्रबंध कर ली बाबा महादेव जी तो पुछया, ते उन्होंने इको गल कही सी गुरु अर्जन देव नू, भरावा बाबे बुढ़े नालों वध लियाकत किस दे कोल है, ओदे नालों सियाणा सूझवान केड़ा है। ते जदों बीड साहब तो बाबा बुढ़ा जी नू बुलाया सी, ते बाबे बुढ़े ने इको ही शब्द कहा सी, सतगुरु मैं तेरे पुत्र नू पढ़ा सकना, मैं तां तेरियां मझां दा छेड़ूआं मझां नू चार सकना, तेरे खेतां विच हल वाह सकना वा, दातरी पकड़ के तेरे घर दे पशुआं लई मैं चारा पठे वढ़ सकना वा, किसे विद्वान दी नियुक्ति कर जेड़ा तेरे बच्चे नू पढ़ाए, कोई आलम लभ लवो। ते गुरु अर्जन देव ने इको शब्द कहा सी, बाबा बुढ़ा मैनू नहीं पता तू खेतां विच वाई करना, तू गुरु घर दे पशु सांभना, तू गुरु दर ते बैठ के केवल हत्ती सेवा करना, मेरे पुत्र नू केवल ओ विद्या पढ़ा दे जेड़े तेरे गुणा नू देख के गुरु नानक ने तैनू अपनी गलवकड़ी विच लै लिया है। बस मेरे पुत्र नू ओ चीज पढ़ा दे जिवें गुरु नानक तेरे ते त्रुट पिया, मेरे पुत्र उत्ते भी उस प्यारे दी कृपा हो जाए। बाबा बुढ़ा जी ने विद्या आरंभ कराई। सिख विद्वान ए भी मानते ने कि घोड़ असवारी शस्त्र विद्या ए भी बाबा बुढ़ा जी ने हरगोबिंद साहब सच्चे पिता महाराज जी नू सिखाई। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जदों लाहौर गए ने, तवारीख दे मुताबिक गुरु हरगोबिंद साहब नू गुरियाई दे के गए ने। साहब नू पता है कि लाहौर जाना है, उत्थे तुरका ने खुजत करनी है, ते साडा चीज साडा ठीकरा गुरुदेव कहिंदे ने उत्थे जरूर लगेगा। धन गुरु अर्जन देव जी की शहादत हो गई है, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरगद्दी ते विराजमान होए ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इन्हां दे कोल जेड़े दो सिख ने भारी जीवन वाले, उन्हां विचों एक बाबा बुढ़ा ते दूजा भाई गुरदास है। बाबा बुढ़ा आदि सिख जिन्हें गुरु नानक साहब तो कृपा लई, भाई गुरदास गुरु अमरदास जी दे वेले तो सिखी कमा रहे है। उस तो इलावा भाई बिधी चंद, भाई जेठा, भाई पुराणा, भाई लंगा, भाई पिरागा, ये मुख सिखी सिख ने जेड़े गुरु हरगोबिंद साहब की चरण शरण विच रहिंदे ने। साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पिता जी की शहादत तो बाद सानू एक नवी सेध दिती है। वैसे बाणी के आधार से मैं अर्ज करांगा, गुरु हरगोबिंद साहब जी नू बाबा बुढ़ा जी ने गुरियाई का तिलक भी पाया है, तिलक भी लाया है, ते बाबा बुढ़ा जी ने दो कृपाना गुरु हरगोबिंद साहब नू पहनाईया ने। ते साहब ने पहले दिन यही सारी सिख संगत नू संबोधन किया सी कि अज तो बाद रुपये नहीं,

शीश दिया शिर ना दिया, परम सम्मान योग चवल शत दे मालक तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान को बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों खताबली दीवान विच हजूर दी चरण शरण विच आप जी ने हाजरी भरी है। इराकी गुरबाणी का कीर्तन आपने सरवण किया है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे शहादत वाला दिन पिछे बतीत होया है, उस गुरु तेग बहादुर पिता जी दे पावन पवित्र जीवन उन्हां दी शहादत दी विचार आपां नी करनी, कोशिश यही करिए कि अरंभता तो लेके संखेप गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी नाल आपां सांझ पाईए। ठीक है, कई गुरमुखां नूं जीवनी दे संबंध विच बहुत जानकारी मिली, पर फिर भी कई ऐसे गुरमुख प्यारे संगत विच मिलणगे जिन्हां नूं गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी संबंधी शहादत दा तां जरूर पता है, पर गुरु तेग बहादुर जी होर की बख्शां कीतियां, किवें हर थां ते जुल्म नूं जबर नूं सतगुरु ने सबर दे नाल सह लिया। आओ उस गुरु तेग बहादुर जी दा धरिए ध्यान, जिस गुरु तेग बहादुर जी दा आगमन अमृतसर दी धरती ते होया है, गुरता गद्दी बकाले बाबा बकाले विच प्राप्त हुई है, ते जिस गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत दिल्ली चांदनी चौक नेड़े हुई, आओ उस गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा दा ध्यान करो। मैं अर्ज कीती सी, गुरु कलगी वाले कहिंदे ने कदी तू प्यार नाल गुरु तेग बहादुर जी नूं एक वारी चेते कर लई, जिथे तू याद करेगा गुरु तेग बहादुर उत्थे सहायक होणगे। गुरु तेग बहादुर जी दा नां लिया तां भलिया घर विच किसे चीज दी कमी नहीं रहिंदी। साहिब दे बचन असीं पढ़ने आ, तेग बहादुर सिमरिया घर नौनिद आवै ताए, सब थाई होए सहाय करो कृपालता। प्यार अदब दे नाल गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी चौथे गुरुदेव जिन्ना दे पावन पवित्र अस्थान नूं तक के गुरु अर्जन साहिब जी ने एक बचन कहा सी, हे बापू दिठे सबे थां नहीं तुझ जेहा, बदहो पुरख बिधाते तां तू सोहया, वस दी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हां नानक कसमल जाए नाए रामदास सर। उस गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी गुरु अमरदास जी तो प्राप्त हुई है। मैं आरंभ तो इस खानदान दे आरंभ तो तुरना चाहना वा। गुरु रामदास महाराज गुरगद्दी ते विराजमान रहे ने, आप जी दी हजूरी अंदर संतोख सरदा सरोवर एदा भी टप लगा सी, हजूर दी हजूरी विच ही अमृत सरोवर दी सेवा कीती गई। गुरु रामदास जी ने 30 रागां विच बाणी उचारण कीती ते गुरु रामदास जी दे घर विच कहन तो मुराद माता बीबी भानी दी कुख विचों तीन पुत्रां ने जन्म लिया। उन्हां विचों सन सब तो वड्डे बाबा तृतीया जी, उस तो छोटे सन बाबा महादेव जी ते सब तो छोटे सन शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव महाराज। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने चवर शतर धन गुरु अर्जन साहिब जी नूं दित्ता है, तां ही तां पट्टा